मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आइए आरंभ करते हैं हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा की शुरुआत में लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं जयती
1: और मैं ईरा
0: स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
1: तो साथियों, आज दिन है रविवार का और रविवार का दिन होता है हमारे और आपके पसंदीदा सेगमेंट युवा तरंग का, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे हमारे युवा साथियों से की गई ढेर सारी बातचीत और साथ ही उनके पसंदीदा गीत भी।
0: लेकिन इसके पहले कि हम उस बातचीत में आगे बढ़े, हम चलते हैं कार्यक्रम की उस कड़ी में जहां हम पूछेंगे आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। और उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है कि रक्त समूहों की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे।
1: और साथियों, दूसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है।
0: हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब जरूर ढूंढ कर रखेंगे। तो ईरा, मुझे लगता है कि इसी के साथ हम हमारे कार्यक्रम के गानों की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का आज का पहला गीत।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानवता, सेवा और जीवन से जुड़ा हुआ है। हर वर्ष 14 जून को हम मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस।
6: जी हाँ साथियों, ये दिन उन लाखों स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर अनेक लोगों को जीवनदान देने का कार्य करते हैं।
5: वास्तव में रक्तदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं बल्कि मानवता की सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक यूनिट रक्त कई मरीजों के उपचार में सहायक हो सकता है। दुर्घटनाओं, बड़ी शल्य चिकित्सा, कैंसर, थैलेसीमिया तथा प्रसव के दौरान अनेक रोगियों को रक्त की आवश्यकता पड़ती ही है
6: और यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों ये है कि रक्तदान का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसे केवल एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा ही

0: दान किया जा सकता है।
1: विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का उद्देश्य केवल रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना ही नहीं बल्कि लोगों को नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना भी है।
0: और साथियों, क्या आप जानते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लेंसनर की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने रक्तदान समूहों की खोज की थी जिसने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एक नई दिशा प्रदान की।
1: आज की युवा पीढ़ी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है साथियों। यदि युवा वर्ग नियमित रक्तदान को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करे तो देश में रक्त की कमी की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा जयती तुमने। कई युवा संगठन, शैक्षणिक संस्थान और सामाजिक संस्थाएं समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित कर लोगों को इस पुनीत कार्य से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो श्रोताओं, हमें भी उम्मीद है कि आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को जरूर निभाएंगे। और मुझे लगता है ईरा, अब हम हमारे साथियों से जो हमने आज बातचीत की है वो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं।
0: बिल्कुल जयती, लेकिन इसके पहले एक गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल चलेगा।

0: चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली मेहमान से। तो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैम।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम वंशिका वाधवानी है।
0: वंशिका, आप क्या करती हैं?
1: मैं एक स्कूल टीचर हूँ।
0: अरे वाह।
1: और मैं क्लासेस 6th to 8th लेती
0: हूँ। अरे वाह, तो आप कौन सा विषय पढ़ाती हैं?
1: मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ।
0: अरे वाह। तो वंशिका, मुझे ये बताइए कि अभी आप जैसे 6th to 8th क्लासेस, मतलब लगभग 14 से 16 वर्षों के बीच के स्टूडेंट्स को आप अगर मोस्टली पढ़ाती होंगी, तो मुझे ये बताइए कि हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तब के स्टूडेंट्स में और आज के स्टूडेंट्स में आप क्या डिफरेंस देखती हैं, किस तरह का एक बदलाव आया है एक जनरेशन में?
1: ओके, तो जब आपने ये चीज़ बोली तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में क्लिक हुई वो ये है कि आज के युवा, आज की जनरेशन जो है वो काफी इम्पेशेंट, उन्हें हर चीज तुरंत चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: कुछ भी नया सीखते हैं अगर वो, तो वो एक ट्राई करेंगे, दो ट्राई मारेंगे, बट उसके बाद नहीं होता है तो वो छोड़ देते हैं।
0: हाँ।
1: उनमें पेशेंस की बहुत कमी हो गई है। और जहां तक मुझे याद है, हम लोग ट्राई करते जाते थे, हम अपना पेशेंस लूज नहीं करते थे। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू सोशल मीडिया, क्योंकि वो स्क्रोलिंग की आदत ने हमको ऐसा बना दिया है।
0: बिल्कुल। पेशेंस, और मुझे लगता है कि अटेंशन स्पैन की भी एक बात हो गई है। हम लोग जब स्कूल में थे तब आई थिंक हमारे 50 मिनट के, एक एक घंटे के जो हमारे पीरियड्स लगते थे, और अब वो उसकी भी आई थिंक ड्यूरेशन कम कर दी गई है, क्योंकि बच्चे इतनी देर तक एक क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो वो भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वंशिका, मतलब मुझे लगता है तुम्हें भी स्टूडेंट हुए अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं होगा, हार्डली 8-9 साल हुए होंगे, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे में एज अ स्टूडेंट और जो तुम आगे की मतलब जनरेशन को पढ़ा रही हो, तो उसके अंदर उन्हें मोटिवेट करने के लिए तुम क्या करते
1: हो? तो मैं अपने स्टूडेंट्स को मोस्टली यही बोलती हूँ कि जितना ज्यादा हो वो अच्छी बुक्स पढ़े, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, क्योंकि जिस तरह की बातें वो पढ़ेंगे देखेंगे वही चीज वो सीखेंगे, क्योंकि वो उस एज में है कि जहाँ हम अपने आसपास से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली भी वो चीजें हमारे अंदर आने लगती
0: है।
1: तो जितना अपने आप को वो सेल्फ हेल्प बुक्स और अच्छी चीजों से सराउंडेड रखेंगे तो वो भी अच्छे बनेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है उनको मोटिवेट करने का।
0: बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब जैसे तुम बात कर रही हो तो मुझे एक चीज ये और भी लगती है कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं और जो आई थिंक लेट्स से 7-8 साल पुराने स्टूडेंट्स रहे होंगे, उनके बिहेवियर में कैसा चेंज आया है, अगर कोई पॉजिटिव चेंज के बारे में अगर तुम बात करना चाहो तो?
1: एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज जो मैंने नोटिस किया है कि आज के जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस, ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी बात

0: चलिए श्रोताओं, अब हम चलते हैं हमारी अगली मेहमान से बात करने। तो नमस्ते जी।
1: नमस्ते,
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम जाह्नवी श्रीवास्तव है।
0: जाह्नवी, आप मुझे पहले बताइए, आप कितने साल की हैं और आप क्या करती हैं?
1: मैं 22 साल की हूँ और मैं एक शिक्षिका हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, 22 साल में आपने टीचर बनने का ऑप्ट किया। पहले तो मुझे आप इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताइए कि आपने टीचर बनने का कैसे डिसाइड किया।
1: स्टोरी कुछ इस प्रकार ही है थोड़ी सी, कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को उनको नर्चर करना बहुत पसंद है, अपनी शिक्षा उनसे बांटना और सब चीज बहुत पसंद करती हूँ मैं।
0: तो आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं?
1: मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ।
0: आप इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो थोड़ा सा आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए कि इंग्लिश में आपकी रुचि कैसे जगी, क्योंकि आप जिस तरह से बात करें मुझे तो आप हिंदी में भी उतनी ही अच्छी लग रही हैं, तो आप इंग्लिश पढ़ा रही हैं तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि भाषाओं पर आपकी कमान मुझे लगता है अच्छी होगी। तो आप मुझे बताइए कि आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट कैसे चुना?
1: मैंने इंग्लिश चुना, मैंने जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी उसके बाद से मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू करा। नॉवेल्स पढ़ी काफी कुछ, और फिर कॉलेज में लगा कि बैचलर्स और मास्टर्स इसी में करना चाहिए, तो मैंने इसी में आगे पढ़ाई करी है।
0: तो पहले तो हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी बुक रिकमेंडेशंस दीजिए, हमारे युवा श्रोताओं के लिए खासकर, कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जिन्हें वो पढ़ें जिनसे उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज भी आए, या अगर आप फिक्शन पढ़ती हो तो बिल्कुल फिक्शन की भी कहानियां या किताबें बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं और अपने कैरेक्टर में भी बहुत ज्यादा चेंज लाती हैं, क्योंकि उनने इतना अच्छा अच्छा करा है, उनके बारे में लिखा गया है। पुरानी किताबें जो हैं, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी, जेन ऑस्टिन ने लिखी, ये सारी कुछ किताबें हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं।
0: बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं। तो कोई किताबों के नाम होंगे आपके पास में एक दो?
1: प्राइड एंड प्रेजुडिस है जेन ऑस्टिन की, फिर उसके बाद मेरी एक बुक है जो बहुत ही ज्यादा फेवरेट लगती है मुझे, वो बुक है का नाम है माय डेज विद द बादशाह। ये रजनीकांत की ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने बुक में लिखी हुई है, उनके डायरेक्टर ने उस मूवी की।
0: बहुत ही, ये तो इसके बारे में मुझे लगता नहीं कि ज्यादा लोगों को मालूम होगा,
1: इसके बारे में शायद ही किसी को ज्यादा पता।
0: ये तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के। तो जाह्नवी, मुझे एक चीज बताइए, आप टीचर हैं, स्कूल में पढ़ा रही हैं, आप अभी खुद भी एकदम 22 साल की हैं, तो मतलब एकदम आप भी अडल्ट लाइफ में आपने भी एकदम एंट्री ही की है अपने, ऐसा देखा जाए तो मुझे लगता है कि आजकल के जिस तरह से वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें मुझे लग रहा है पढ़ाई के इम्पोर्टेंस पे लोगों ने बात करना कम कर दी है, क्योंकि सोशल मीडिया आ चुका है बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है कि हर कोई अपने आसपास के वातावरण से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, और पढ़ाई को अब लोगों ने इतना ज्यादा हाइप करके रख दिया है कि लोग डरने लगे हैं पढ़ने से। तो मुझे बताइए कि एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स के लिए, या जो अपने मास्टर्स या पीएचडी या किसी भी तरह के एकेडमिक फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे?
1: पढ़ाई को जितना लोगों ने हाइप कर रखा है उतनी होती नहीं है, पढ़ाई तो बहुत ज्यादा इजी होती है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अच्छा काम चाहिए, बेसिकली पैसे कमाने के लिए आजकल पढ़ाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मार्टनेस के लिए भी पढ़ाई होती है, एक पर्सनालिटी डेवलप आपकी पढ़ाई करती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है 10 लोगों में बैठने का, सारी चीजों का, तो पढ़ाई तो बहुत ज्यादा ही जरूरी होती है। और मैं तो एज अ टीचर एक बात बता सकती हूँ कि मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से तैयार कर रही हूँ कि वो अच्छे से अपने आप को सोसाइटी में प्रेजेंट कर पाए।
0: बहुत अच्छी बात है। तो जाह्नवी, चलिए हम कॉन्वर्सेशन के एंड पर ही चलते हैं, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी।

0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं हमारी अगली मेहमान के साथ। नमस्ते जी।
1: नमस्ते,
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम निष्ठा है।
0: निष्ठा, आप कितने साल की हैं और आप क्या करती हैं?
1: मैं 23 साल की हूँ और मैं एक टीचर हूँ।
0: अरे वाह, तो निष्ठा मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या करना पसंद है, आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं?
1: मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ और मुझे पेंटिंग और रीडिंग करना बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छी बात है। और आप कौन सी क्लासेस पढ़ाती हैं?
1: मैं 6 to 8 पढ़ाती हूँ।
0: ओ, मतलब एकदम टीनेज वाले इयर्स में आप पढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी तक टीचिंग में?
1: बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, हाउ टू डील विद यंगस्टर्स।
0: या मुझे लगता है कि मतलब जिस तरह की जनरेशन गैप आते जा रही है, विद हर 3 और 4 साल में एक जनरेशन बदलते जा रही है, तो निष्ठा मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके स्टूडेंट्स के लिए या इन टोटल इस जनरेशन के सामने सबसे बड़ा क्या चैलेंज है?
1: सबसे बड़ा चैलेंज आजकल बच्चों के लिए ये है कि वो बहुत इनडिसाइसिव है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें किस ऑप्शन पर जाना चाहिए, वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
0: तो मतलब क्या उससे डील करने का एक क्या तरीका हो सकता है आपको? क्या
1: सबसे पहले डील करना इज अपने आप से बात करना, आपको क्या चाहिए लाइफ में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर द ऑप्शंस। क्योंकि चीजें तो बहुत सारी है, लोग इन्फ्लुएंस भी बहुत करेंगे, बट व्हाट यू वांट इज यू हैव टू थिंक अपॉन इट।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बताओ कि आप भी अभी 23 ईयर्स की हो, मतलब आपने भी अपनी जिंदगी देखा जाए तो अभी शुरू ही की है, और मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में सक्सेस के मायने बहुत ज्यादा बदल गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके, अगर आप कह रहे हो कि मेरा ये स्टूडेंट सक्सेसफुल है, तो ऐसे क्या क्राइटेरिया है जो उसने फुलफिल किए हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आपका जो बच्चा है वो सफल है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, जो बहुत सिविलाइज्ड होते हैं, जिन्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना आती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, वही लोग लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्राइटेरिया, जैसे मुझे लगता है कि डिग्रीज, मार्क्स, ये सब बहुत सेकेंडरी हो जाता है, एक अगर बच्चा एक अच्छा इंसान हो, जिसके अंदर काइंडनेस हो, जिसके अंदर एक, जैसे आपने कहा कि ऑनेस्टी हो, तो भी मुझे लगता है कि एक, अगर वो एक अच्छा इंसान है तो मेरी नजर में वो एक सफल इंसान है। डू यू अग्री विद दिस?
1: यस, आई एब्सोल्युटली अग्री विद इट। जिसमें बहुत अच्छी सोशल स्किल्स होती है, जो अपनी बात सामने वाले को बहुत अच्छे से समझा सकता है, जो खुद पर कॉन्फिडेंस रखता है, वही व्यक्ति सफल होता है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो निष्ठा, मैं अब आपसे थोड़े से पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप मुझे रैंडमली बताइए कि आपने कहा कि आपको किताबें पढ़ना जैसे बहुत पसंद है, तो आपकी कोई पसंदीदा किताब बता दीजिए।
1: मेरी पसंदीदा किताब है हैरी पॉटर।
0: मैं वेरी श्योर कि आपने मूवीज भी सारी देखी होंगी।
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि अगर आपको अभी एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आप एक कोई भी कला तुरंत सीख सकते हैं, तो वो क्या होगा?
1: मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का मस्तिष्क, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ूं और लोगों को समझूं कि वो कैसा सोचते हैं।
0: वाओ। निष्ठा, हम लोग आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे बस ये बताओ कि क्या आपने कभी पहले ब्लड डोनेट किया है?
1: हाँ जी बिल्कुल किया है।
0: तो क्या बताना चाहेंगी उस एक्सपीरियंस के बारे में, अगर कुछ बताना चाहें तो?
1: एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, पर उसके साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का ध्यान

0: रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक्सपीरियंस करा कि मैंने जब ब्लड डोनेट करा तो मैंने उतना अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तो मुझे अनकॉन्शियस फील हुआ थोड़ी देर के लिए, मुझे चक्कर आए। तो फूड हैबिट्स, अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी हमको उसके साथ रखना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम भी हम ब्लड डोनेट कर सके और किसी की हेल्प कर सके।
1: वाओ। और अगर हम चाहें कि हम एक अवेयरनेस अगर पैदा करना चाहें टुवर्ड्स ब्लड डोनेशन, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं?
0: मैं सोचती हूँ कि अगर हमें ब्लड डोनेट करना है तो हम स्कूल्स कॉलेजेस में एक कैंपेन चलाए, अवेयरनेस क्रिएट करें वहाँ पर, सोशल मीडिया पर। आजकल जैसे सब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया वेरी इजीली, तो हम इस बारे में भी सोशल मीडिया पर गाइड करें ताकि यंगस्टर्स भी इससे जुड़ सके।
1: बहुत अच्छी बात है। मुझे एक छोटा सा रैपिड फायर करने का बहुत मन कर रहा है, ये हमने एक दो बार पहले भी किया हुआ है हमारे जिनसे हम बात करते हैं, तो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी, उसमें से आपको जो आपके ऑप्शन दिमाग में पहला है मुझे बताइए। टी और कॉफी?
0: टी।
1: किताबें या मोबाइल?
0: किताबें।
1: सुबह जल्दी उठना या देर रात तक जगना?
0: सुबह जल्दी उठना।
1: योर फेवरेट स्पोर्ट?
0: क्रिकेट।
1: एक शब्द में आज की जनरेशन का डिस्क्रिप्शन?
0: जेंजी।
1: जेंजी, ओके। सोशल सर्विस और एंटरटेनमेंट?
0: एंटरटेनमेंट।
1: और मुझे बस जल्दी से एक ऐसा कोई कारण बताइए कि हम ब्लड डोनेशन के प्रति अवेयरनेस जो फैलाना चाह रहे हैं वो हमें क्यों फैलाना चाहिए, उसके पीछे एक अगर कोई कोर थॉट हो आपका।
0: कि जिन लोगों का एक्चुअल नीड है उन तक ये चीज पहुंच सके, सो दैट नोबडी डाइज इन द एब्सेंस ऑफ ब्लड और जस्ट फॉर अ पिटी रीजन कि उनको ब्लड नहीं मिला इसलिए पास डवे।
1: राइट।
0: तो मैं चाहती हूँ कि जिसको नीड है उसके पास ये चीजें बहुत जल्दी पहुंचे।
1: राइट। मुझे निष्ठा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।

0: तो श्रोताओं, ये था हमारे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत। हमें उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल साथियों, और आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा ये बात आप हमें ईमेल या पत्र के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है airindore.in@gmail.com।
0: मुझे लगता है ईरा, अब हमने कार्यक्रम के शुरुआत में जो हमारे श्रोताओं से प्रश्न पूछे थे उनके भी जवाब हम बता सकते हैं। तो उसमें आज पहला सवाल था कि रक्त समूहों की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, और इसका सही उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर।
1: और साथियों, कार्यक्रम का दूसरा प्रश्न था, भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, जिसका उत्तर है 1 अक्टूबर। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने भी इन दोनों ही प्रश्नों के सही उत्तर खोजे होंगे। और इसी के साथ दीजिए इजाजत इरा
0: और जयति को।
1: नमस्कार।

अभी सुन रहे थे आप युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है और लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म घर से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है गुलजार ने और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

घर फिल्म से सुन रहे थे अभी आप ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार आर डी बर्मन। और आप इस गीत को सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, जहाँ चल रहा है फिल्मी गीतों का सफ़र फिल्म संगीत में।

मंजिल फिल्म से सुना अभी आपने गाना, किशोर कुमार की आवाज़ में, लिखा था योगेश ने, राहुल देव बर्मन का संगीत था। श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से चल रहा है फिल्म संगीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे अभी आप ये गाना, फिल्म का नाम था कुदरत, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।

धरोंदा फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, रूना लैला और भूपिंदर के स्वर में। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार जयदेव। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से चल रहा है फिल्म संगीत।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और ये गीत अभी हम आपको सुनवा रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में। ये गीत था तीसरी मंजिल फिल्म से, जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत।

सनम तेरी कसम, इस फिल्म का गाना भी आपको सुनवा रहे थे हम किशोर कुमार की आवाज़ में। गुलशन बावरा ने इसके बोल लिखे थे और संगीत तैयार किया था आरडी परमन ने। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी इंदौर से आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत।

अनजान का लिखा ये गीत अभी आपको सुनवा रहे थे हम किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम था महान, संगीत था आर डी बर्मन का। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में ये गीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में सुना भी आपने ये गाना फिल्म मशाल से। लिखा था जावेद ने और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था। और आप इसे सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, जहां चल रहा है फिल्म संगीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में सुना भी आपने गाना, जिसे लिखा था नीरज ने, एसडी बर्मन का संगीत था और फिल्म का नाम था शर्मीली। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम और अगला गीत।

साथ साथ फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में, लिखा था जावेद अख्तर ने और कुलदीप सिंह का संगीत था। और इसी के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में सुनिए आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच की कॉमेंट्री का सीधा प्रसारण।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गज वाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही। वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोक वाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोकगीतों के साथ संगत हेतु उपयोग में लाई जाती है। इसे खड़े रहकर और बैठकर दोनों ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतया भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत में भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद बुंदू खां। तो आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1948 में किया गया था।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

गज तत्वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारूबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव परिवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव परिवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, विशाल प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां स्लोवाक शैली में पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिसमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है। 3 अन्य लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय नौसैनिक पोत शारदा ने श्रीलंका के कोलंबो की यात्रा पूरी कर ली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रीलंका की नौसेना के साथ कई पेशेवर प्रशिक्षण और खेल संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज और किशोरी कुमकुम मोहन ने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन और किम जे डेओ को हराया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने

0: पाकिस्तान के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज रात और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात समाप्ति तक आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच की कमेंट्री का सीधा प्रसारण। कल सुबह 6:05 पर सुनेगा भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। चिंतन का समय होगा सुबह 6:30 और खेती की बातें सुनेंगे आप 6:35 से।

खेती के बातें में कल जानिए रागी यानी फिंगर मिलेट के बारे में और जानकारी देंगे डॉक्टर अनुराधा शर्मा। श्री रामचरितमानस कान का प्रसंग आप सुनेंगे सुबह 6:40 से। श्रोताओं कल का गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम का विषय होगा स्वास्थ्य ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग और इस पर चर्चा आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस विषय पर। समय होगा कार्यक्रम का सुबह 7:20 और 8:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: घर खर्च के पैसे 2000 जी,
1: ये राशन के 15000, सब्जियों के 2000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ।
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बड़ी बहू,
5: ये तुम्हारे ना,
4: इतनी भी क्या जल्दी थी।
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
4: और
5: ये मेरी गुड़िया के ना।
6: पर दादी,
5: हाँ,
6: आपके नाम?
7: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो। क्या
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में 24 लाख से अधिक MSME इकाइयों के माध्यम से 125 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए किए गए ट्रांसफर और प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 120 से अधिक स्टार्टअप, प्रमुख निवेशक, प्रौद्योगिकी लीडर और दुनिया भर के शिक्षा संस्थान शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में स्टार्टअप क्रांति का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं और भारत लोकोन्मुखी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति देने के साथ ही भविष्य को आकार दे रही हैं।
10: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
9: वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारत के नवाचार तंत्र और फ्रांस के प्रौद्योगिकी विस्तार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। आज भोपाल में समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
11: 2047 तक जो हमने पुनः लक्ष्य तय किया उसमें 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। इस टारगेट से हम आगे बढ़ रहे हैं जिसके बलबूते पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। आज हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या 7,400 से ज्यादा हो गई जिसमें 50% 3,400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ।
9: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न

0: की 900 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 350 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की। साथ ही समस्त देवताओं का भुगतान और विशेष पैकेज के तहत भी इकाइयों को सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति 2025 और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत भी हित लाभ प्रदान किए। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर की 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा,
2: आज लाडली बहनाओं की राशि डालते डालते लगभग 3 वर्ष हुए हैं। जून 2023 से प्रारंभ होने वाली योजना में हमारी सरकार के द्वारा आज 1,25,17,000 से अधिक बहनों के खाते में 1,835 करोड़ रुपए की राशि उनके सिंगल क्लिक से उनके खाते में गई है। जून 2026 तक 59,588 और 93 लाख की राशि, लगभग 60,000 करोड़ की राशि ये हमने लाडली बहनाओं के खाते में डाली, जो प्रति माह 1,500 रुपया उनके खाते में जा रहा है।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बेरखेड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को मिट्टी और पौधों की वैज्ञानिक जांच, आधुनिक खेती का प्रशिक्षण, नई तकनीकों की जानकारी और विशेषज्ञ सलाह एक ही स्थान पर मिलेंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनियाभर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रदेश के 19 जिलों की बाल कल्याण समिति CWC के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय आवासीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों ने किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल अधिकारों, बाल संरक्षण तंत्र, पुनर्वास और बाल कल्याण समितियों की वैधानिक जिम्मेदारियों पर जानकारी दी। अब बात मौसम की। प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी और अशोकनगर जिलों में तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यदि मौसम प्रणाली इसी तरह सक्रिय रही तो 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून का औपचारिक प्रवेश हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 जून को बैतूल प्रवास प्रस्तावित है। इसे देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा ड्रोन, UAV तथा अन्य उड़ने वाले उपकरणों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले में अनुगुंज अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मंदसौर जिले में आयोजित जन कल्याण शिविरों में अब तक 3,841 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,582 पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। खंडवा जिले की जनपद पंचायत हरसू द्वारा आयोजित जन शिविर में जनजाति कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने सहभागिता कर ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में कल देर शाम नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में कार सवार

0: जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: शमीम तैयार, इस बार ये गेंद घुटनों के बल बैठते हुए स्वीप कर दिया। फील्डर गेंद के पीछे बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, और गेंद सीमा रेखा से जाकर टकराती हुई चार रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: साहिरा जमीन ने हालांकि दौड़ तो काफी लगाई थी, लेकिन गेंद की रफ्तार उनसे काफी ज्यादा तेज थी।
2: और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

जान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी। अब अंजाम कुछ भी हो, युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहाँ ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की।

फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता। लेकिन

फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
2: इश्क से

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आती हूँ, ठहरो ठहरो।
1: पायला की पटवारी ताई।
2: जीते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के साथ जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे रात भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ, आओ बैठो बैठो, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
3: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: जी, इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ।
3: अरे न्योता?
1: हाँ, कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आएगा और खाना भी मेरे यही।
3: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर
1: जाऊँ। ऐसा कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं है।
3: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता है ना, तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
3: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
3: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
1: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, एकड़ जमीन तो गिरवी डाल ही चुके हो।
1: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्ची को नाकों चने चबवा दूंगा।
3: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टेम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
3: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
3: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा।
1: अरे ओ ओ हो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो हो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
3: अच्छा,
1: ए राम राम।
3: अच्छा राम राम भैया, राम राम।
1: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
3: अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।
4: पिया

0: अरे भाई बाजे वाले, जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ फुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
0: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
0: हाँ भाई कह आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गई, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
0: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूलवा, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: सच, अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भगवान
0: है, क्यों नहीं?
2: देखो ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है मेरी लली। मैं तो उसका नाम

0: भाग दे रखूं।
1: अरे बावली, मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
0: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
1: ओहो, तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
2: अरे मंगरू, मंगरू
1: वो क्या बात है माधो?
2: अरे चौधरी जी आ गए हैं। चौधरी जी?
1: हाँ। देख माधो, तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
2: अच्छा मैं आता हूँ।
1: हाँ, मैं अभी आता हूँ।
2: ठीक है,
1: मैं भी आता हूँ।
3: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
1: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़ा सही वक्त पे आया। आइए आइए बिना जी।
3: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
1: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप
3: मेरी रकम दे रहे हो ना।
1: जी जी वो
3: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
1: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे के वो रुपए तो सब
3: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू, मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
1: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
3: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवां आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची।
1: ओ चौधरी जी, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पिपाई चुका दूंगा। धर्म से धर्म?
3: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
1: चौधरी जी, मालिक मालिक,
3: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा।
1: नहीं नहीं चौधरी जी, नहीं, कुछ भी दया कीजिए, दया कीजिए।
3: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
1: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। आप
4: मंगरू,
1: पटवारी जी, पटवारी जी।
4: भैया, अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पाँव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
3: 3,000।
4: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
3: जी आप?
4: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
3: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलो, राम राम, मैं चलता हूँ, जय राम जी की।
4: अच्छा भैया, जय राम जी की।
1: पटवारी जी, आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
4: मंगरू, तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
1: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
4: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
1: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
4: और एक भूल तुमने और भी की
1: है?
4: जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
1: नहीं, वो क्या पटवारी जी है?
4: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
1: पर गलती उसी की पटवारी जी।
4: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो।
1: हाँ,
4: और हाँ, मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
1: तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
4: देखो,
1: क्या करूँ?
4: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
1: लेकिन
4: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है।
1: हाँ।
4: देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है
1: ठीक, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी, और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
4: कौन से रुपए भाई?
1: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
4: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
1: काहे?
4: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
1: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो
4: अच्छा ये लो मंगू,
1: ये क्या कागज? ये कैसे कागज है? कैसे कागज है?
4: मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
1: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
4: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है? ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
1: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
4: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व तो समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
1: अच्छा, वो किस तरह?
4: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
1: अच्छा।
4: हाँ, अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
1: अच्छा,
4: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
1: 11,000?
4: हाँ भाई,
1: सच सच कह रहे पटवारी जी?
4: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ। और रुपया मिल जाने के बाद
1: अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
4: लेकिन अब फजूल खर्च मत कर।
1: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
4: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर।
0: अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आ गए हैं, जल्दी से चलिए।
1: आ गए पंडित जी? चलिए, आइए पटवारी जी, आइए आइए,
4: चलो चलो।

कागज के जेवर हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गाए इस गाने से। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है तुम मिले।

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: लॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: Frontier Models is spearheading global innovation.
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है, और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
5: स्पेशली दी कंट्रीज लाइक आर्स।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs, Jean-Noël Barrot, and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
8: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
7: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
8: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
7: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
9: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as in Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
7: The French president also lauded India's achievements, including Chandrayaan mission, as examples of India's technological excellence.
9: With the Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing on the south pole of the moon, that was led in record time by ISRO with cost, with record force, is demonstrations in terms of strength, innovation, but also in terms of implementation at the industrial level, and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today. Not only a country full of contractors, no, it's a country of innovation.
7: Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India is emerging as a trusted and reliable partner at a time of global geopolitical and technological transformation.
10: The world seeks trusted and reliable partners. And that is what India brings to the table. We bring the energy of the world's youngest large nation, the finest talent pool available, and a scale that few can match.
7: Following the inauguration, Prime Minister Modi and President Macron visited the exhibition and interacted with startup founders, researchers, and investors participating in the event. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. We have more from our correspondent.
11: A ceremonial welcome will be accorded to the Prime Minister on Monday morning. Sri Narendra Modi will meet President Pellegrini and Prime Minister Fico during the visit. The Indian diaspora in Slovak Republic is highly excited about the maiden visit of an Indian Prime Minister to the country. Smidhi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
7: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation and a rapidly expanding innovation ecosystem. Our correspondent has filed this report.
12: Programs such as Swachh Bharat, Digital India, Digital Health, Deep Ocean Mission and Gaganyaan have helped position science and innovation at center of India's development journey. Missions such as Chandrayaan 3 have transformed space science into a subject of widespread public interest, creating unprecedented awareness and engagement among citizens across the country. India's growing capabilities in frontier sectors such as space, atomic energy and advanced technologies have strengthened the country's global standing. With Suparna Sekia, Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
7: The National Testing Agency NTA has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download their admit cards from NTA's official website, neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on the 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district this afternoon. 5 injured were shifted to Pandharpur for treatment. An investigation has been launched into the incident. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic accident. He also announced an ex gratia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the News at 9. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature on 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government to bring ease of living in the lives of the country's citizens. A report.
13: Twelve years of reforms have become 12 years of trust. Whether it is GST, faceless tax or Digital India, every step has made citizens feel that they too are nation builders. Comprehensive revisions to income, tax slabs and rates in the Union Budget 25-26 have been designed to benefit all taxpayers. Next generation GST has simplified taxation and made life easier for citizens. Talking to Akashwani News, film producer and distributor Sameer Dixit said GST reforms are one of the biggest policy decisions of this government.
14: The GST has completed 10 years and now we have got a very better structure of GST for the all services and products. And as far as the film production and the other things are concerned, so that way now the GST is becoming more user friendly and it is fully online. It's a good and simple tax and that is now it is happening.
13: Narendra Modi government has embraced digital technology and has leveraged this technology within both the realms of politics and policy making. India is poised to become a global leader in 6G technology. The goal is to contribute approximately 10% to global patents related to 6G. Talking to Akashwani News, Mahendra Tiwari, CEO of Ethernet Express, said Digital India is helping people living in remote areas and people who are at the bottom of the pyramid.
15: Digital India is going to shape up the country of ours. This paradigm shift is truly worth appreciating. The initiative like BharatNet, which is being complemented by the infrastructure which is being created by telcos or the infra providers, is something which is going to surely pave path for a glorious future of India.
13: Over the past 12 years, NDA government has envisioned the nation's dreams on a grand scale and worked to ensure saturation of programs designed to enhance

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना, गीत इंदिवर ने लिखा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ।

0: मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। किदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर

संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता।

0: भूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर। 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद, इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांग लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने, माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का, फिर क्यों उदास हो तुम।

सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते।

अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

ये कैसी कैफियत है, दर्द और सुकून का ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल?

हमेशा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गुंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

संदिल है वक्त एक शातिर बाजीगर, वक्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरो सामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भोले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा, हमेशा गूंजते रहेंगे तराने।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन
1: दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके।
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस

0: को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महसवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NFPI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron.